0: बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म स्थान बुद्ध चोक समेटिने टोल तथा क्षेत्रहरू खोपटार गाइटार र कटुन्जे।
1: मिति 2083 साल भदौ 21 गते। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। स्थान तल्लो सुनारपानी। समेटिने टोल तथा ओडाहरू तल्लो सुनारपानी सबै।
0: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। स्थान च्यान डाँडा। समेटिने टोल तथा ओडाहरू माथिल्लो सुनारपानी तथा सुनारपानी सबै।
1: सोही दिन दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म। स्थान मचबारी। समेटिन टोल तथा ओडाहरू मचबारी पहरी टोल।
0: सोही दिन दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म। स्थान भ्याउरे। समेटिने टोल तथा ओडाहरू भ्याउरे सबै।
1: मिति 2083 साल भदौ 21 गते। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्थान सिमले। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सिमले सबै।
0: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। स्थान लिखे बजार। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सुकाजोर छाप पातले हिले पानी पालेबन।
1: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान रजय छाप। समेटिने टोल तथा ओडाहरू रजय छाप।
0: सोही दिन दिउँसो 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म। स्थान मुडाजोर। समेटिने टोल तथा ओडाहरू मुडाजोर क्षेत्र।
1: सोही दिन दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म। स्थान मुगान। समेटिने टोल तथा ओडाहरू मुगान थुम्का र ढिपी।
0: मिति 2083 साल भदौ 22 गते। स्थान कुनौरी। समय बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म। समेटिने टोल तथा ओडाहरू कुनौरी सबै।
1: सोही दिन बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। स्थान हात्तीटार। समेटिने टोल तथा ओडाहरू हात्तीटार सबै।
0: सोही दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान सेलेघाट। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सेलेघाट सबै।
1: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान डाँडा खर्क। समेटिने टोल तथा ओडाहरू डाँडा खर्क सबै।
0: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म। स्थान केउरे पानी। समेटिने टोल तथा ओडाहरू केउरे पानी सबै।
1: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान मुगीटार। समेटिने टोल तथा ओडाहरू भटौली सबै।
0: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म। स्थान धारा पानी। समेटिने टोल तथा ओडाहरू टेकनपुर मन्थली 2 सबै।
1: मिति 2083 साल भदौ 23 गते। स्थान सल्ले। समय बिहान 9:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सल्ले सबै।
0: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म। स्थान डुम्री खर्क। समेटिने टोल तथा ओडाहरू डुम्री खर्क सबै।
1: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म। स्थान क्याम्पस चौर। समेटिने टोल तथा ओडाहरू लामा गाउँ, लामा टोल र रामेछा बजार।
0: सोही दिन बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म। स्थान भङ्गेरी। समेटिने टोल तथा ओडाहरू भङ्गेरी बाबिय खर्क।
1: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म। स्थान आरू बटे। समेटिने टोल तथा ओडाहरू आरू बटे सबै।
0: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। स्थान भीमसेन मन्दिर। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सिमन्ती, पखेरा, भोटे गाउँ र ल्याङल्याङ।
1: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्थान हुलाक डाँडा। समेटिने टोल तथा ओडाहरू भिरपानी, सिमपानी, हुलाक डाँडा र बेतेनी।
0: मिति 2083 साल भदौ 24 गते। स्थान सातमारे। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। समेटिने टोल तथा ओडाहरू सातमारे सबै।
1: सोही दिन बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म। स्थान कार्यालयको हल। समेटिने टोल तथा ओडाहरू पुडहर, मन्थली तथा छुटेका सबै।
0: मिति 2083 साल भदौ 27 गते। स्थान एजियस होटल मन्थली। समय बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। निर्णय प्रमाणीकरण सभाका प्रतिनिधि सबै उपस्थित हुनुपर्नेछ।
1: पुनश्च वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा आउँदा परिचय पत्र वा पासबुक अनिवार्य रूपमा लिएर आउनु हुन अनुरोध छ।
0: थप जानकारीका लागि सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यालय मन्थली। सम्पर्क नम्बर 0484543004। रामेछाप सेवा केन्द्र। सम्पर्क नम्बर 0484040067।
1: सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड मन्थली रामेछाप।

0: संस्था एकीकरण सम्बन्धमा,
1: ऋण अपलेखन सम्बन्धमा,
0: संस्थाको जग्गा बिक्री सम्बन्धमा,
1: शेयर लाभांश र संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष वितरण सम्बन्धमा,
0: नियमनकारी निकायको निर्देशन जानकारी सम्बन्धमा,
1: संस्थागत प्रतिनिधिको जानकारी सम्बन्धमा,
0: सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा,
1: सदस्यहरूबाट प्राप्त प्रस्ताव र सुझावहरू सम्बन्धमा,
0: संचालक समितिको पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवा तोक्ने सम्बन्धमा,
1: संचालक समितिलाई अख्तियारी सम्बन्धमा,
0: धितो लिलामी सम्बन्धमा,
1: साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्नको लागि प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धमा,
2: क्षेत्रगत वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान।
0: मिति 2083 साल भदौ 20 गते। स्थान थाक्ले। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म। समिति नै टोल तथा क्षेत्रहरू थाक्ले तथा बाँकेमेरी।
2: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म। स्थान साङुटार बजार। समिति नै टोल तथा क्षेत्रहरू साङुटार सबै।
0: सोही दिन दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। स्थान च्याउकी छाँटी। समेटिनी टोल तथा क्षेत्रहरू च्याउकी छाँटी र सालु बजार।
2: सोही दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्थान च्यास्कु। समेटिनी टोल तथा क्षेत्रहरू च्यास्कु, बिसौली, होदिल।
0: सोही दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्थान रामपुर भन्ज्याङ। समेटिनी टोल तथा क्षेत्रहरू रामपुर सबै।
2: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। स्थान भालुखोप। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू चाम्बोट, गैरीगाउँ, भालुखोप र ओख्रेनी।
0: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। स्थान बुद्ध चोक। समेटिनी टोल तथा क्षेत्रहरू खोपटार, गाइटार र कटुन्जे।
2: मिति 2083 साल भदौ 21 गते। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। स्थान तल्लो सुनारपानी। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू तल्लो सुनारपानी सबै।
0: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। स्थान च्यान डाँडा। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू माथिल्लो सुनारपानी तथा सुनारपानी सबै।
2: सोही दिन दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म। स्थान मचबारी। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू मचबारी, पहरी टोल।
0: सोही दिन दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म। स्थान भ्याउरे। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू भ्याउरे सबै।
2: मिति 2083 साल भदौ 21 गते। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्थान सिमले। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू सिमले सबै।
0: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। स्थान लिखे बजार। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू सुकाजोर, छाप, पातले, हिले पानी, पालेबन।
2: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान रजय छाप। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू रजय छाप।
0: सोही दिन दिउँसो 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म। स्थान मुडाजोर। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू मुडाजोर क्षेत्र।
2: सोही दिन दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म। स्थान मुगान। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू मुगान, थुम्का र ढिपी।
0: मिति 2083 साल भदौ 22 गते। स्थान कुनौरी। समय बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू कुनौरी सबै।
2: सोही दिन बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। स्थान हातीटार। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू हातीटार सबै।
0: सोही दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान सेलेघाट। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू सेलेघाट सबै।
2: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान डाँडा खर्क। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू डाँडा खर्क सबै।
0: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म। स्थान केउरे पानी। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू केउरे पानी सबै।
2: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। स्थान मुगिटार। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू भटौली सबै।
0: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म। स्थान धारा पानी। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू टेकनपुर, मन्थली 2 सबै।
2: मिति 2083 साल भदौ 23 गते। स्थान सल्ले। समय बिहान 9:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू सल्ले सबै।
0: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म। स्थान डुम्री खर्क। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू डुम्री खर्क सबै।
2: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि 2:04 बजेसम्म। स्थान क्याम्पस चौर। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू लामा गाउँ, लामा टोल र रामेछाप बजार।
0: सोही दिन बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म। स्थान भङ्गेरी। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू भङ्गेरी, बाबिय खर्क।
2: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म। स्थान आरुबटे। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू आरुबटे सबै।
0: सोही दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। स्थान भीमसेन मन्दिर। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू सिमन्ती, पखेरा, भोटे गाउँ र ल्याङल्याङ।
2: सोही दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्थान हुलाक डाँडा। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू भिरपानी, सिमपानी, हुलाक डाँडा र बेतेनी।
0: मिति 2083 साल भदौ 24 गते। स्थान सापमारे। समय बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म। समेटिनी टोल तथा ओडाहरू सापमारे सबै।

0: पीआरबीटी 01600033625 पीआरबीटी 6054017 यूटीएल 7732506
1: शब्द संगीत र स्वर माधव केसी अरेन्जर यमन खनाल उत्पादक तथा वितरक सुपा देउराली म्युजिक प्राली काठमाडौँ प्रबन्धक यमन खनाल सम्पर्क 9849